सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मा सर्वं धर्मं सर्वानुक्ता सर्वामुक्ता ऋषावल सांत्वा प्रसाद नमो दर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्भाव भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पुत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा

मेरे करज जती के सूर सरातन शुद्ध सुधाधिका संत समूह अनेक मती के सारे हिदेश को देख रहे हो मर को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के बाते मतंग जरे जर संगानूप तंग सुरंग सवारे कूट तरंग कुरंग से कुदता पौन के गौन को जातन बारे भारी पुजान के पू बली बेदा न्याम शीस न जात विचारे एते पैता कह बैबू बता अंत कौ नंगे ही पाए बदारे जीत फिर सब दे दसान को बाज टून मृदंग नंगारे गुंजत कूड़ गजान के सुंदर सदी है राज हजारे भूत भविख पवान के बू बता कौन गने नी जात विचारे श्रीपा श्री

0: काल जुगरत गन का कूड़ गैरतवाओ महला पहला।
1: साम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सब कुछ सच समा वैरी करे पर पूरा नाम देवा मसूर। नाय लिये प्रच जाय नानक तुम खंतर पाए जुज।

0: अभ्यासकरम तरम क्रिया
1: सदन त्याग मन मदे फिरिया
0: अनेक प्रकार किए व जतना
1: पुण्य दान हो में वो रतना
0: शरीर कटाए हम में कर राती
1: भारत नेम करे वो पाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: खंड पृथ्वी फिरे

0: हर शरीर कटावे
1: तो भी होमे मैल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ ना है
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए
0: मन कामना तीर्थ दे छुटे
1: जग कुमान मांगे रूटे
0: सोच करे दिन सर रात

0: अंतर्यामी
1: अपनी गत में जानो आपे
0: आपन संग आप रवराते
1: दुबरी उस्तत तुम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म

0: प्रात तार उपर सुख बसे
1: सुत प्रात मीत बनता संग रसे
0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुला
0: जे प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री

0: सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए
1: मेघ बिना ज्यों खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिरते सब काम
1: ज्यों किरपन के नराज सदाम
0: तन तन ते जन जह कट बस्यो हर नाओ
1: नानक ताके बल बल जाओ
0: रहत अवर कश अवर कमावत
1: माने प्रीत मुखो कंड लावत
0: जानन हार प्रभु परवीन
1: बाहर देख न काहू पीन
0: अवर उपदेश

0: सत रहुला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: सत सगल छिद्र ठाके
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके
0: प्रसाद तुझको न

0: संबल सगली कोत
1: साध के संग मिटे अभिमान
0: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
0: साध संग सब होत नवेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
0: साध के संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा वरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा ब्रह्मे समानी
1: साध के संग अगोचर मिले
0: साध के संग सदा पर खुले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पहुंचा
1: साध संग हुए सबकी रेन
0: साध के संग मनोहर बैन
1: साध के संग न कतहु तावे
0: साध संग सित मन पावे
1: साध के संग माया ते पैन
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापनीत
1: साध संग के सो नहीं बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नहीं हो ताप
0: साध के संग तजे सब आप
1: पे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कबहू तावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस्त अगोचर लहे
0: साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे स्थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु कह करवान
1: साध के संग सब कुल उधार
0: साध संग साजन मीत कुटुंब सारे
1: साधु के संग थो तन पावे
0: जिस तन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप लायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गाम
0: नानक साध के संग सफल जाम
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन पेट धोत निहाल
1: साध के संग कलुखत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां उहां सहेला
0: साध संग विशरत हर मेला
1: पीछे सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरता जावे
1: हर ब्रह्म साधरित बसे
0: नानक उतरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाम
0: साध संग हर के गुण गाओ

0: परम ज्ञानी सदा निर्लेप,
1: जैसे जल में कमल अलेप।
0: परम ज्ञानी सदा निर्धोख,
1: जैसे सूर सर क्यों शोक।
0: परम ज्ञानी के दृष्ट समान,
1: जैसे

0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास
1: जैसे तारु पर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सबते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक जिन प्रभु आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
0: ब्रह्म

0: सगल उदार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभु संग।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद।
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवार।

0: करे प्रव्याप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागे पाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही,
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधखर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

0: जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाथर मिर्ख निक जाए
0: कई कोट पवन पानी वह संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशिय सुनिकर
1: कई कोट देव दान इंद्र शिव शतर
0: सकल समग्री अपने सुतार
1: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस्थान साकत
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत हर शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जानता
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी में स्वरण थीवे
0: कई कोट जख्या किनर

0: जन्मे जीवे मरहे।
1: कई कोट वो जूनी फिरे,
0: कई कोट बैठे ती खाए,
1: कई कोट काले थक पाए,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत।
0: जय जय पाना तै तै राखे,
1: नानक सब किस प्रभु के हाथे।
0: कई कोट पए बैरागी,
1: राम नाम संग तेले बलागी।
0: कई कोट प्रभु को खो जनते,
1: आत्म में पार ब्रह्म लहंते।
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास,
1: इनको मिलियो प्रभु अविनाश।
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग।
0: इनको होए आप सो प्रसन्न।

0: छूटै
1: सेंस कटे लख क्यों उठता आवै
0: तृप्त नावै माया पाछे पावै
1: अनक भोग बिख्या के करै
0: नेत्र

0: दुख नार जा घटे
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत हुए मलीन
1: संत के दुखन शोभा तेहीन
0: संत के हते को रखे ना कोए
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक भी करे
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संत के दुखन काम जो लवे
0: संतन के दुखन सर्व जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिग जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले
1: संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन नीच न जाए
0: संत दुखी का था को नाए
1: नानक संत पावे तो भी गत पाए
0: संत का निंदक मां हत्या पाई
1: संत का निंदक घंटे करना पाई
0: संत का निंदक मां सा प्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज से हीन
1: संत का निंदक दुखिया हीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा वियोग
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नानक संत पावे तो उसका भी होए भोग
0: संत का दुखी सदा अपवैत

0: जब निर्गुण प्रभ से सुभाए
1: तब सिर सकत कहो के कटाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योतर
1: तब कवन निडर कवन कत डर
0: अपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपन आसन
1: ते जन्म मरण को कहा विनाशन
0: पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो के सोए
0: जब गत गोच प्रभ का
1: तब चित्र रूप के पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: अपने आप आप ही चर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही परजा
0: ते निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: ते बिन मैर कहो के अटूटा
0: ते निरंजन निरंकार निर्वाण
1: ते कौन को मान कौन अभिमान
0: केवल जगदीश
1: ऐशा शंकर लग तो कीश
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तै किसे फूक कवन तावे
0: कारण करावण करने हार
1: नानक करते का नाही समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई

0: पूर्ण कतर में लेकर
1: पानी प्रभु की सबको बोले
0: आप डोल न कहूं डोले
1: सर्व कलाकर खेले खेल
0: बोल न पाइये गुणे होला
1: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
0: तारे हो स्वामी हो तोत
1: प्रसाद परम का नास
0: नानक दिन में हो सास
1: संत जना का पिखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सब वचन
0: सर

0: सब होई।
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभु ते सगली उत्पत्त
1: इस पावेता करे विस्तार
0: इस पावेता एक